0: ஜிஆர்டி ஜுவல்லர்ஸ் வழங்கும் ஆடி தங்க திருவிழா. சிறப்பு சலுகையாக புதிய தங்க நகை மீது கிராமிற்கு 200 ரூபாய் குறைவாகவும், பழைய தங்க நகை எக்ஸ்சேஞ்சின் மீது கிராமிற்கு 150 ரூபாய் கூடுதலாகவும், வைரம் மற்றும் அன்கட் வைரத்தின் மதிப்பின் மீது 12.5% குறைவாக பெறுங்கள். மேலும் பல சலுகைகள் நிபந்தனைகளுக்குட்பட்டது. உடனே உங்கள் அருகில் உள்ள ஜிஆர்டி ஷோரூமுக்கு வருகை தாருங்கள். ஜிஆர்டி ஜுவல்லர்ஸ், சுப ஆரம்பங்களின் ஆரம்பம்.
1: 14 அகஸ்ட் 1947, भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर, परिवार, जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद कर और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में 1 मिनट का मौन धारण करें।

0: अमर शहीदों को नमन करते हैं और राष्ट्र निर्माण में जुटे हर भारतीय का अभिनंदन करते हैं। विक्रम वन की लॉन्चिंग, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य, राष्ट्रमंडल खेलों में 39 पदक और डिजिटल क्रांति, यही है नए भारत की पहचान। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के हर घर तिरंगा हर दिन तिरंगा अभियान से जुड़े। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: गीतांजलि मेडिकल सेंटर 24 மணி நேர விபத்து மற்றும் தீவிர சிகிச்சை பிரிவு, தலைக்காயம், விஷமுறிவு, எலும்பு முறிவு, ஆர்த்ரைட்டிஸ் நோய்களுக்கான சிறப்பு சிகிச்சை மற்றும் முழு உடல் பரிசோதனையும் செய்யப்படும். கீதாஞ்சலி மெடிக்கல் சென்டர், புத்தூர், திருச்சி.
2: அழகும் அன்பும் சேருமிடம் ஹரிணி ஜுவல்லர்ஸ்.
3: ஹரிணி ஜுவல்லர்ஸ், சிந்தாமணி பஜார், அண்ணா சிலை அருகில், திருச்சி.
4: இந்தியாவின் மாபெரும் தங்க மாளிகை திருச்சி மற்றும் சேலம் மங்களன் மங்கள் தங்க மாளிகையின் ஆடி அதிரடி தள்ளுபடி July 17 முதல் August 17 வரை. தங்க நகைகள் மிக மிக குறைந்த சேதாரம். மேலும் பவுனுக்கு ₹1,500 ஆதிரடி தள்ளுபடி. உங்கள் பழைய 916 நகைகளை அன்றைய மார்க்கெட் விலைக்கு எக்ஸ்சேஞ்ச் செய்து புதிய நகை வாங்கும் போது பவுனுக்கு ₹1,500 தள்ளுபடியும் பெறுங்கள். மங்களன் மங்கள், திருச்சி மற்றும் சேலம்.
5: ஆடி வந்தாச்சு, தள்ளுபடி போட்டாச்சு.
6: ஸ்ரீ தைலா சில்க்ஸ், திருச்சி மற்றும் கும்பகோணம். ஸ்ரீ தைலா சில்க்ஸ் வந்தீங்கன்னா ஒரே கொண்டாட்டம் தான்.
7: இந்தியாவின் நம்பர் 1 டீலர் வசந்த் அண்ட் கோவின் சுதந்திர தின சிறப்பு காம்போ ஆஃபர்ஸ். புல்லட் மிக்சி அண்ட் எலக்ட்ரிக் கெட்டில் 1947 மட்டுமே. 3 லிட்டர் பிரஷர் குக்கர் டின்னர் செட் அண்ட் 3 பீசஸ் கண்டெய்னர் செட் 1947 மட்டுமே. 3 ஜார் மிக்சி 1947 மட்டுமே. 2 பர்னர் கிளாஸ் ஸ்டாப் கேஸ் ஸ்டவ் 1947 மட்டுமே. எளிய தவணை முறை வசதி, தரம் நம்பிக்கை. வசந்த் அண்ட் கோ.
8: GRT ஜுவல்லர்ஸ் வழங்கும் ஆடி தங்க திருவிழா சிறப்பு சலுகையாக புதிய தங்க நகை மீது கிராமிற்கு ₹200 குறைவாகவும், பழைய தங்க நகை எக்ஸ்சேஞ்சின் மீது கிராமிற்கு ₹150 கூடுதலாக, வைரம் மற்றும் அங்கட் வைரத்தின் மதிப்பின் மீது 12.5% குறைவாக பெறுங்கள். மேலும் பல சலுகைகள், நிபந்தனைகளுக்குட்பட்டது. உடனே உங்கள் அருகில் உள்ள GRT ஷோரூமுக்கு வருகை தாருங்கள். GRT ஜுவல்லர்ஸ், சுப ஆரம்பங்களின் ஆரம்பம்.
9: இனி கேட்கலாம் சந்தேஷ் டு சோல்ஜர்ஸ்.
10: शाम के 4 बज गए हैं। पेश है फिल्म रेनबो पर मुख्य समाचार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मानसून सत्र में 12 विधेयकों को पारित किए जाने के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% कामकाज हुआ है। खनन क्षेत्र को अधिक कुशल बनाने के लिए खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 संसद ने पारित कर दिया है। इससे देश के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल बनाने में मदद मिलेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में पूर्व तृणमूल कांग्रेस सरकार के संशोधित नियमों के अंतर्गत जारी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी ए और ओबीसी बी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए हैं। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय पंजाब में 454 फार्मेसी ऑफिसर की नियुक्ति प्रक्रिया पर 17 सितम्बर को इस मामले की सुनवाई तक स्थगन लगा दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्षी दलों पर पंजाब और झारखंड के छात्रों की समस्याओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में राजस्थान मंत्रिमंडल ने आज राजस्थान समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 के मसौदे सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 100 से अधिक कलाकारों को संगीत नाटक फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए हैं। अमेरिका में कई राज्यों ने 15 अगस्त को भारत दिवस के रूप में मनाने के लिए विशेष आदेश जारी किए गए हैं। कोलंबिया ने शक्तिशाली भूकंप के बाद राहत और पुनर्निर्माण उपायों के लिए आर्थिक आपातकाल घोषित किया है। और कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स फाइनल में अमेरिका के ब्रेंडन नाकाशीमा का मुकाबला अपने ही देश के बेन शेल्टन से होगा। एफएम रेनबो पर ये थे मुख्य समाचार। आगे है हमारा प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स।
11: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

0: 102.6 ये देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो, और यहाँ पर प्रोग्राम शुरू हो गया है आपका और हमारा फेवरेट शो, वीकली शो संदेश टू सोल्जर्स। और संदेश टू सोल्जर्स के आज के इस खास एपिसोड के साथ हाजिर है शाहिद, और आज के हमारे खास मेहमान हैं मेजर मानिक एम जोली, सेना मेडल से सम्मानित रिटायर्ड ऑफिसर हैं, इंडियन आर्मी के वेटरन हैं, गोरखा राइफल्स और मिलिट्री इंटेलिजेंस इनका एक्सपीरियंस है, फील्ड कमांडर, कॉर्बेट इनोवेटर एंड मास कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजिस्ट, फाउंडर हैं नेत्रम डिफेंस रिव्यू के, मेजर मानिक एम जोली। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी रेनबो पर संदेश टू सोल्जर्स में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद शायद, बहुत अच्छा लगा आपसे आज फाइनली बात करके।
0: जी सर, हमें भी बहुत बहुत हम आपके शुक्रगुजार हैं, और सर आपने अपना समय निकाला, कीमती समय आपने निकाला है और आप आए हैं हमारे स्टूडियो में। सर बहुत बहुत आपका एक बार फिर से स्वागत हम करना चाहेंगे, और जैसा कि हमने आपको आपके बारे में सर थोड़ा सा बताया है तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, लेकिन जो बातचीत अभी इंटरव्यू से पहले आपसे चल रही थी तो उसमें मुझे बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें आपके साथ पता लगी, और लग रहा है कि ये शो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सर हमें सबसे पहले तो ये बताएं कि जिस तरीके से ये शुरुआत होती है एक आर्मी ऑफिसर बनने की तरफ, जो एक एक यंग कैडेट जाता है, तो वो कैसा एक्सपीरियंस होता है और क्या महसूस करता है, वो क्या जोश, वो जज्बा, वो नेशन और एक देश के लिए एक जज्बा होता है जब जाते हैं?
1: तो शायद सबके अपने अपने रीजंस होते हैं आर्मी ज्वाइन करने के, लेकिन एक कॉन्स्टेंट फिक्स रीजन सबका ये होता है कि हर फौजी का अपने देश के प्रति सर्विस करने का, माँ भारती के लिए सेवा करने का एक पक्का जज्बा फिक्स रहता है। बाकी सब एक्सक्यूजेज हैं, पर आप कभी भी ये नहीं पाएंगे कि एक फौजी इससे हट के जवाब दे कि हाँ मैं देश की सेवा नहीं करना चाहता था, कोई और कारण था।
0: जी
1: तो ये हमारा कांस्टेंट है। तो मैं भी बचपन में, मेरे नाना जी भी आर्मी में थे,
0: अच्छा,
1: तो मेरी माँ ने बचपन से ही मुझे यही कहा था तुमने फौज में ही जाना है,
0: यानी कि ऑलरेडी आपको जो है ग्राउंड बना हुआ मिल गया था, बस आपने उस पर या तो अपना सफर शुरू किया।
1: यस, जैसे मैंने 6th, 7th, 8th क्लास के दौरान
0: जी
1: तैयारी शुरू करी एनडीए की, तो 12th खत्म होने से पहले मैंने एनडीए क्लियर कर लिया था, तो स्कूल के एकदम बाद फिर मैं एनडीए चला गया। मैं रोहतक का रहने वाला हूँ
0: जी,
1: तो वहां से मेरी क्लास से हम 5 गए थे, तो वो शहर में भी थोड़ा इट हैज द वर्ल्ड रिकॉर्ड, रोहतक सिटी का रिकॉर्ड है मैक्सिमम ऑफिसर्स प्रोड्यूस करने का हरियाणा में। तो बस हमारे यहाँ काफी ट्रेंड होता है आर्मी में जाने का, आर्मी नेवी एयरफोर्स मतलब।
0: जी सर, आपने मेजर मानिक एम जोली हमारे साथ जो सेना मेडल से सम्मानित हैं सर, इस पर हम बात करेंगे कि किस तरह से आपको सेना मेडल से सम्मानित किया गया और दूसरे अवार्ड भी आपको प्रदान किए गए हैं, साथ ही आपको पीएम मोदी का मिशन इनोवेशन नेशनल चैंपियन का भी अवार्ड दिया गया। उसके अलावा ऐसे बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं आपकी जिसमें आपके पूरे करियर में लगातार कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ आप हासिल करते रहे अपनी डेडिकेशन से, अपनी मेहनत से, अपने जज्बे से। उसके अलावा हम और भी और चीजें हैं जो हमें आपके बारे में पता लगी हैं, क्योंकि आप कमीशन हुए थे गोरखा रेजिमेंट में 1999 में, फिर उसके बाद आपने मिलिट्री इंटेलिजेंस में काम किया और आपने 10 साल आपने वहां पर अपनी सर्विसेज प्रदान की, और काउंटर इंटेलिजेंस एंड स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट के तौर पर। तो ये बहुत ही एक ना वैरायटी वाला और बहुत ही अलग अलग तरह के आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, एक आर्मी ऑफिसर, फिर उसके बाद आपने जम्मू कश्मीर में काफी लंबा समय दिया है, सर्व किया है आपने, और जिस टाइम पर आप कमीशन हुए उस टाइम पर कारगिल वॉर का मेरे ख्याल से टाइम था।
1: बिल्कुल, हम जब कमीशन हुए 99 जून में कारगिल वॉर चल रहा था।
0: अच्छा,
1: तो जब हमारी कमिशनिंग परेड थी हम सारे बहुत एक्साइटेड थे कि अब लड़ाई में जाने
0: हम भी जाएंगे। अच्छा,
1: मुझे याद है कि स्टार न्यूज ने एक रिपोर्टर जर्नलिस्ट को भेजा था हमें इंटरव्यू करने के लिए।
0: ओके,
1: और जो जो लड़के इन्फेंट्री में गए थे जो वहां पे लड़ाई के लिए जा रहे थे यूनिट्स थी, तो उनका उन्होंने हमारा अलग से इंटरव्यू लिया था। अच्छा, कि आप लोग लड़ाई में जा रहे हैं कैसा लग रहा है, तो हम सारों का एक ही जवाब था बहुत एक्साइटेड है जल्दी भेजिए। लेकिन जब तक हम कमीशन हुए एक्चुअली सीज फायर अनाउंस हो गया।
0: अच्छा,
1: तो ये हम अपना ठीक है देश के लिए युद्ध ना होना एक तरह का अच्छी, लेकिन पर्सनली आपस में ये है कि हम अपना दुर्भाग्य मानते हैं कि मैं उस लड़ाई में लड़ने का मौका नहीं मिला।
0: मतलब एक फौजी है और वो चाहता है कि मैं किसी तरह से मैं लड़ाई का हिस्सा बनूं।
1: इससे बड़ा

0: टेस्ट क्या है हमारे लिए कि लड़ाई में लड़ने का मौका मिले,
1: बिल्कुल,
0: तो वो यूं लगा लीजिए 2-3 हफ्ते से हम मिस कर गए थे।
1: अच्छा, और सर ये भी है कि उस कारगिल वॉर में जो लोग, जो फौजी शामिल थे उस वॉर का हिस्सा थे, जिसमें से काफी सारे जो फौजी थे उनको शहादत भी हुई, तो वो आपके इमीडिएट सीनियर भी थे, मतलब आपसे उनकी अच्छी खासी जब आप ट्रेनिंग में थे तब उनसे मिलते थे, बातचीत होती थी।
0: बिल्कुल, बहुतों को हम बहुत अच्छे से जानते थे, हमारा वो हमारे से 1 या 2 कोर सीनियर्स थे, काफियों को हम एनडीए में मिले थे, कुछ को आईएमए में जानते थे, जो फेमस कैप्टन विजयन थापर थे,
1: जी जी,
0: वो मेरे साथ वाले कमरे में रहते थे, और मुझे याद है मैंने उनसे जब वो पास आउट होके जा रहे थे, वो 6 महीने पहले पास आउट हुए थे,
1: अच्छा,
0: तो मैंने उनसे, उन्होंने मेरी कैसेट ले रखी थी माइकल जैक्सन की,
1: अच्छा,
0: तो मैंने कहा सर कैसेट तो वापस कर जाओ, कहते अरे यार जब नेक्स्ट मिलेंगे तब दे देंगे, मतलब आज भी वो बात याद है। उसके बाद फिर तो हमें यही पता लगा कि उन्होंने देश के लिए इतना बड़ा काम किया,
1: जी,
0: सुमित रॉय, विक्रम बत्रा, सारे हमारे सीनियर्स थे,
1: अच्छा,
0: और मतलब देश इनके बारे जितनी बात करे उतनी कम है, इतनी यंग एज पर, आप किसी भी वॉर में देखिए इंडियन आर्मी के यंग ऑफिसर्स की जो रेशियो ऑफ सेक्रीफाइस है वो किसी भी देश से ऊपर मानी जाती है, क्योंकि जब हम लोग पहुंचते हैं
1: जी
0: तो सारे टैक्टिक्स एक तरफ, हम कहते हैं हम ही चार्ज करेंगे, आप हम अपने जवानों को सभी यही बोलते हैं मेरा पीछा मेरा, तो इसीलिए ये एक प्रिंसिपली हमारी आर्मी बहुत ना केवल एथिकली बहुत
1: एथिकली और साथ ही साथ
0: वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड एंड प्लेस्ड, लेकिन उसका यह भी कारण है कि जितने यंग ऑफिसर्स जाते हैं
1: मुझे
0: कोई ऐसा नहीं होता तुम आगे चलो हम तुम्हारे हम कहते
1: हम आगे चलेंगे,
0: हम आगे चलेंगे तुम हमारे पीछे चलो।
1: क्या बात है, ये जज्बा तो सर काबिल तारीफ है। तो ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियां और यादगार किस्से हैं जो हम मेजर मानिक के साथ डिस्कस करेंगे आज के संदेश टू सोल्जर्स में। और साथ ही एक चीज और आपको मैं बता दूंगा कि जिसमें हम आगे बात करेंगे कि मेजर मानिक ऑथर भी हैं और इन्होंने एक किताब भी लिखी है। तो हमारे साथ है मेजर मानिक एम जॉली, इंडियन आर्मी से सेना मेडल से सम्मानित, आज के रहेगी बात जारी संदेश टू सोल्जर्स में।

0: 102.6 देश के नंबर 1 रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स आप सुन रहे हैं मेरे साथ, मेरा नाम है शाहिद और मेरे साथ हैं आज के संदेश टू सोल्जर्स के खास मेहमान मेजर मानिक एम जॉली, सेना मेडल से सम्मानित इंडियन आर्मी वेटरन, गोरखा राइफल्स और मिलिट्री इंटेलिजेंस फील्ड कमांडर, कॉर्पोरेट मिलिट्री इंटेलिजेंस, कॉर्पोरेट इनोवेटर, मास कम्युनिकेशन स्ट्रेटजिस्ट, नेत्रम डिफेंस रिव्यू के फाउंडर हैं और साथ ही सेलिब्रेटेड ऑथर हैं, टीवी पैनलिस्ट हैं, लीडरशिप कोच हैं और काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में कश्मीर में इन्होंने ट्रूप्स को भी कमांड किया है। हम एक बार फिर स्वागत करेंगे मेजर मानिक जॉली का। सर बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर संदेश टू सोल्जर्स में।
1: थैंक यू शाहिद, थैंक यू।
0: सर मैं आपके बारे में जब बात करना शुरू करता हूं तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं और फिर भी कुछ ना कुछ रह जाता है लेकिन उसके बारे में हम साथ साथ बात करते रहेंगे। पहले सर मैं आपके वो जो गैलेंट्री अवार्ड्स हैं उनके बारे में जानना चाहूंगा। आपको पहला सेवा मेडल से सम्मानित किया गया जो गैलेंट्री अवार्ड कहा जाता है आर्मी का, तो वो किस तरह से और किस उपलक्ष्य में आपको दिया गया?
1: ये मेरी नौकरी का पहला दूसरा साल ही था। मैं यंग कैप्टन था और कुपवाड़ा में हम लोग तैनात थे। मेरी गोरखा रेजिमेंट यूनिट का हिस्सा था मैं
0: जी।
1: तो मेरी जो यूनिट है फर्स्ट बटालियन फोर्थ गोरखा राइफल्स, तकरीबन 200 साल पुरानी हो जाएगी थोड़े दिन में।
0: ओके,
1: वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेजिमेंट्स। तो बहादुरी और ड्यूटी हमारे रग रग में तैयार किया जाता है। तो उसमें हमारी यूनिट ने इतना अच्छा परफॉर्म करा था, हमने 1.5 साल में तकरीबन 100 टेररिस्ट मारे थे।
0: ओके,
1: तो यूनिट को भी साइटेशन मिला था। तो हमने बहुत ऑपरेशंस करे, उनमें से एक ऑपरेशन में मुझे अवार्ड मिला था जिसमें टेररिस्ट ने हम पर हमला किया था जंगल में और उन्होंने हमारे भी एक सैनिक शहीद हो गया था। फिर उन टेररिस्ट को मार के अपने शहीद सैनिक की बॉडी वापस लाने के लिए मुझे सेना मेडल दिया गया था।
0: तो ये पूरा एक मिशन रहा होगा जिस तरीके से आपने बताया कि ये पूरा एक ऑपरेशन रहा होगा। तो सर वो तो बड़ा टफ और बड़ा ही खतरनाक रहा होगा, कुछ बताइए उसके बारे में।
1: देखिए जो ये ऑपरेशन है आज इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं, मैं और यही बात आपके लिसनर्स को बताना चाहता हूं
0: जी
1: कि हम सब अपने घर में बैठे हैं, FM सुन रहे हैं, बारिश का मौसम है, चाय पकौड़े खा रहे हैं
0: जी,
1: पर यही टफ और डेंजरस मिशन इस टाइम लाखों सैनिक कश्मीर के जंगलों में और नॉर्थ ईस्ट के जंगलों में कर रहे हैं,
0: अभी भी कर रहे हैं अपनी
1: दिस वेरी मोमेंट एज वी आर स्पीकिंग, डेली करते हैं 365 दिन। तो एक सोल्जर की लाइफ किस सेकंड आपको जंगल में कहां टेररिस्ट मिल जाए कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। कभी कभी आप महीनों सालों भटकते रहते हैं, आपका एनकाउंटर नहीं होता, कभी आपके एक महीने में 4 एनकाउंटर हो जाते हैं। तो इसकी प्रेडिक्टेबिलिटी जीरो बट पॉसिबिलिटीज

0: रिहाई। सो व्हाट हैपेंस, आप जाते हैं, आपको एनकाउंटर हो गया, इसमें बड़ा चांस है आपने पहले उनको देख लिया, उन्होंने आपको पहले देख लिया, वो फायर करके भागना चाहेगा, वो रुक के लड़ना चाहेगा, बहुत इतने ज्यादा फैक्टर्स आते हैं, वो ऊपर है आप नीचे हैं, आप नीचे, तो इतने फैक्टर डिसाइड करते हैं उस इन दैट वेरी मोमेंट कि व्हाट विल बी द आउटकम, कि इस लड़ाई से कौन कैसे निकलेगा।
1: तो सर जब मिशन पर निकलते हैं

0: तो सर जब मिशन पर निकलते हैं सोल्जर्स हमारे निकलते होंगे, तो वो ये पता होता होगा कि या तो मतलब जीत कर वापस आएंगे मार करके या फिर
1: या शहीद हो,
0: शहीद होकर।
1: यही है, ये फौज का प्रिंसिपल है हमारे यहाँ, देर इज नो रनर्स अप, यू नो, ऐसा कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है। इंडियन आर्मी में हमें एक ही चीज सिखाई जाती है, विक्ट्री और सेक्रीफाइस। या सो आप अगर आपको कहा गया है, और कारगिल वॉर अगेन फिर से जो हम पहले भी बात कर रहे थे, जो यंग ऑफिसर्स इतने सेक्रीफाइस हुए, क्योंकि ट्रेनिंग डे पहले दिन हम 16 साल के होते हैं जब एनडीए ज्वाइन करते हैं।
0: अच्छा।
1: उस दिन से लेकर जब तक 4 साल ट्रेनिंग है, कमीशन होते, एक ही चीज सिखाई जाती है कि अपने देश के लिए, अपनी फौज के लिए, अपनी यूनिट के लिए, आपके ट्रेंच में जो साथी है उस बड़ी के लिए लड़ाई लड़नी है,
0: उस बड़ी के लिए।
1: या तो आप उसके लिए लड़ते हो, वो आपके लड़ता है, ऐसी टीम बनती है।
0: क्या बात है सर, मतलब वो आपके लिए जान कुर्बान के लिए तैयार है और आप उसके लिए, एक दूसरे के लिए।
1: यही कॉन्फिडेंस है जो आर्मी लीडर्स को कॉर्पोरेट लीडर्स इतना फर्क बनाता है, क्योंकि एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है
0: जी।
1: उस जवान को पता है मेरा जो ऑफिसर है कभी ऐसा ऑर्डर नहीं देगा कि मेरी जान खतरे में आए।
0: क्या बात है सर,
1: अगर खतरा होगा तो खुद पहले जाएगा। और एक ऑफिसर को मालूम है कि जब तक मैं हूं, ये मेरे जवान मेरे से आगे लड़ने को तैयार है। तो जब ये इस तरह की
0: ये जो जज्बा है,
1: हाँ जी, जज्बा रहता है, तो सब एक से बढ़कर
0: एक दूसरे के लिए, अपने साथी के लिए, बड़ी के लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं।
1: और कॉन्फिडेंस रहता है कि
0: कॉन्फिडेंस रहता है,
1: अपने सुपीरियर के ऑर्डर में पूरा फेथ है कि ये कभी ऐसा नहीं करेगा कि मेरी जान खतरे में। हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं, हम दुश्मन को मारने के लिए लड़ रहे हैं। वो कहते हैं गिविंग लाइफ फॉर योर कंट्री इज एन ऑनर, तो लेट दैट ऑनर बी ऑफ एनिमी।
0: क्या बात है
1: वो,
0: क्या बात।
1: हाँ, तो हमारा काम है जीतना, दुश्मन को मारना। तो एक बहुत ही अलग लेवल की ट्रेनिंग और कैपेबिलिटी डेवलप करी जाती है आर्मी में, इसी कारण वो ऐसे ऑपरेट करती है। अगर आप उस ढर्रे को कहीं और अप्लाई करना चाहेंगे जहां पे लाइफ एंड डेथ की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो फिर वो ऑपरेट वो नहीं है, सक्सेसफुल होता
0: नहीं हो सकता। सर वही चीज है कि जैसे आपने कहा कि ट्रेनिंग कितनी टफ होती है एक आर्मी ऑफिसर की, लेकिन उस टफ ट्रेनिंग के बावजूद भी वो जो जज्बा है, शायद वो उससे भी ज्यादा भारी है उस पर, उस ट्रेनिंग पर वो जज्बा, कि वो जो अपने नेशन, अपने वतन के लिए, देश के लिए, अपने बड़ी के लिए, अपनी यूनिट के लिए।
1: देखिए मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल, वही हम एनडीए जाए 16-17 साल, इट्स जिसको बोलते हैं इम्प्रेशनेबल एज, 16-17 साल में आप दुनिया को समझना शुरू करते
0: बिल्कुल
1: हैं।
0: बिल्कुल।
1: अब जो लोग कॉलेज जाते हैं उनके चारों तरफ, फॉर एग्जांपल आज का देखते हैं इंस्टाग्राम पे वायरल रील बनाना,
0: बिल्कुल सर, सोशल मीडिया पूरा पूरा एकदम,
1: यू नो, हमारे आसपास क्या होता था, हम जहां ट्रेनिंग करते थे वहां लिखा था एक गोली एक दुश्मन, जो हमारे कमरों किल डेथ बिफोर इट किल्स यू, आई विल डाई फॉर माई कंट्री, चारों तरफ
0: मोटिवेटेड, मतलब स्लोगन आपको मिल रहा है।
1: आप ऐसे एनवायरमेंट में होते हो कि दिन रात आप एक ही चीज सोचते हो कि मैं इस देश के लिए बनाऊं, और अगर कभी जरूरत पड़ेगी
0: तो मैं अपनी जान कुर्बान करूंगा,
1: बिल्कुल, विदाउट अ डाउट। ये तो
0: क्या बात है,
1: इसमें कोई हेजिटेट नहीं करेगा कभी।
0: सर बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें हैं जो मैं आपसे आगे भी करूंगा, अभी एनडीए के बारे में आपसे पूछूंगा कि आपने उस ट्रेनिंग के दौरान क्या क्या, जाहिर है वो वक्त बड़ा ही मेरे ख्याल यादगार होता है बडीज के साथ, और इंटरेस्टिंग भी, और कुछ शरारतें भी जरूर होती हैं उस जमाने में।
1: बिल्कुल, वो एज ऐसी होती है और टाइम ऐसा होता है।
0: तो हम अपने लिसनर्स को यहां बताना चाहेंगे कि आप हमें मैसेज करें, मैसेज बहुत सारे आ चुके हैं सर, मैं आपको बता दूं, और एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप हमें मैसेज करके हमारे आज के गेस्ट मेजर मानिक अमजौली से सवाल कर सकते हैं। नंबर है 9868107070। सर मैं सोचता हूं कि आगे बढ़ूं तो कुछ मैसेजेस तो मैं अभी ले लूं। ये असम से सर मैसेज आया है, गुड आफ्टरनून कह रहे हैं, ये हितेंद्र दास हैं सर, आपको भी और हमें भी बहुत बहुत धन्यवाद आपके मैसेज के लिए हितेंद्र। और उसके बाद मैसेज आया है स्वतंत्रता दिवस का, सब सोल्जर भाइयों का हमारा सल्यूट, हमारा भारत मां की रक्षा सभी क्षेत्र में उनके बलिदान का श्रेष्ठ जीवन का संदेश है। कर्नाटक राज्य विजयपुर डिस्ट्रिक्ट आराकेरी गांव से, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, आरकेडी पंडित चन्नप्पा सरवाड़ का सर ये मैसेज है।
1: थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, और जय हिंद आपको भी।
0: और सर ये मैसेज है, हाय अमजय अहिरवार फ्रॉम मध्य प्रदेश, क्लास 12 सर ये स्टूडेंट है, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए, व्हाट थिंग्स शुड आई रिमेम्बर ड्यूरिंग प्रिपेरेशन एंड फॉर एसएसबी इंटरव्यू, मेनली एसएसबी गाइडेड फॉर सिविलियन। और अजय अहिरवार सर मध्य प्रदेश है, सर इनको कुछ आप गाइड करना चाहेंगे?
1: तो शायद वैसे तो ट्रेनिंग के लिए मतलब बहुत लंबा होता है, पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा जो
0: जी
1: अक्सर लोग गलती करते हैं, वो ट्रेनिंग की प्रिपरेशन करके, इंटरव्यू की तैयारी करके कुछ और बन के दिखाना चाहते हैं, और वो पक्का रेसिपी टू फेलियर है।
0: अच्छा,
1: आप इंटरव्यू में जैसे हैं

0: 100% वैसे रही है, और वो तो फिर इंटरव्यू पर है, वो आपको शेयर, दैट इज, उसको कोई गारंटी नहीं कर सकता. पर अगर आप कुछ और बनने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली थ्रू नहीं होंगे. तो आप अपनी पर्सनैलिटी को कायम रखें,
1: इंटरव्यू की तैयारी
0: जो आप है.
1: क्या बात,
0: अगर
1: है?
0: आपको पिक्चर पसंद है, बोलिए मुझे पिक्चर देखना पसंद है, ये मत बोलिए मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है, क्योंकि टेबल के उधर जो बैठे उसने बहुत बुक्स पढ़ी है, पकड़ लेगा आपको.
1: तो आपको जो आप हैं वही दिखाएं वहां पर. सर एक और मैसेज है, जय हिंद सर जी. जय हिंद मेजर साहब. रजनीकांत रघुनाथ पाटिल महाराष्ट्र वार्ड 1 से मैसेज कर रहे हैं सर ये. और सर ये है संदेश,
0: जय हिंद
1: जी. शो बहुत खूबसूरत शुरू है जी, दिल को छू लेने वाली बहुत खूबसूरत जानकारियां मिल रही हैं. शाहिद जी नमस्ते, मानिक सर नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम. यश शिंदे हैं सर ये मुंबई से, बहुत बहुत धन्यवाद आपके मैसेज के लिए, जय हिंद. और सर ये एक और मैसेज आ गया है, जय हिंद मेजर साहब. कारगिल वॉर तो हमने नहीं देखा है, मूवी में देखा, लेकिन आपके जरिए हम सुनते हैं तो हमारा सीना गर्व से फूल जाता है. एडवांस 80th हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस, वंदे मातरम. रोहित मेहर हैं सर ये बुदापाली विजयपुर बारगढ़ ओडिशा से.
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, सबको जय हिंद.
1: और सर सभी लोग इस वक्त जो है देशभक्ति के जो ना उसमें सराबोर हैं, जुनून में, जोश में, क्योंकि 15 अगस्त पर सब परसों नजदीकी है. और ये स्वतंत्रता दिवस जो हमें याद दिलाता है कि जो कुर्बानियां दी गई इस देश की आजादी के लिए, उन सबको हम याद करते हैं. तो यहां पर हम आगे बढ़ेंगे सर, हम बात करेंगे अब एनडीए की. आपने एनडीए में जब आप आए तो क्या माहौल था वहां पर, नया नया एक्सपीरियंस कैसा लगा एक 16 साल के जब मानिक वहां पर आ रहे थे तो?
0: हाँ जी बिल्कुल. बहुत देखिए, एक तो आप घर से पहली बार बाहर गए होते हैं, और घर से पहली बार बाहर जाके आप किसी रिजॉर्ट में रह रहे हैं तो बात अलग है.
1: अच्छा.
0: लेकिन आप बिल्कुल एक वन ऑफ द टफेस्ट मिलिट्री एकेडमी में चले गए
1: जी,
0: जहां पे डिसिप्लिन इज द हाईएस्ट.
1: आपका
0: आपसे 6 महीने सीनियर वो आपके लिए भगवान की तरह है, वो जो बोलेगा आपको करना पड़ेगा. फिजिकली इट्स वेरी स्ट्रेनिंग. वैसे तो मैं स्पोर्ट्स में था, लेकिन
1: अच्छा.
0: एनडीए का अलग लेवल होता है. तो शुरू में आपको यू नो रूटीन इज वेरी टाइट, फिजिकली इतना डिमांडिंग है
1: जी.
0: तो एक बार तो हर कोई हिल जाता है.
1: बिल्कुल, क्योंकि आपने जैसे कहा स्पोर्ट्स में तो आप थे, लेकिन वो स्पोर्ट्स अलग है जो हम स्कूल में करते हैं या आपने, लेकिन जो आप अकेडमी में कर रहे हैं.
0: बट हमारे स्कूल में बाई चांस स्पोर्ट्स की अच्छी लेगेसी थी, तो मेरे को फिजिकली तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई परफॉर्म करने में. बट ये है कि शुरू में जाके, क्योंकि हम यू नो अपने घर पे रहे थे, कई बच्चे सैनिक स्कूल से आते हैं, उनको थोड़ी आदत होती है.
1: ओके.
0: हम पहली बार घर से आए थे, मुझे याद है कि पहले एक दो हफ्ते में घर की बहुत याद आती
1: जी,
0: क्योंकि चारों तरफ हर कोई आपको खाने को दौड़ता है एनडीए में, और घर पे तो जो भी है आपको
1: बिल्कुल जाहिर है प्यार से. बिल्कुल.
0: तो मैं एक बार काफी दुखी बैठा था अपने रूम में, तो मेरे एक सीनियर आए, वो सीनियर मोस्ट थे, 6th टर्म में थे वो. तो क्या हुआ? मैं कहा सर घर की बहुत याद आ रही है. तो कहते चिट्ठी लिखो.
1: अच्छा.
0: तो मैं आपको बता रहा हूँ बस सोच कैसे होती है. मैं कहता चिट्ठी तो लिख चुका. कहते इधर आओ. मुझे अपने रूम में लेके गए
1: जी,
0: अपना परफ्यूम निकाला अच्छा सा, मेरे पे स्प्रे करा. कहते बस अब खुश हो जाओ, यही खुशी है. वही तुम्हें ऑर्डर है खुश होने का. मैं ठीक है सर. तो और उसके आई थिंक बट वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग वी हैड वॉज, हमारे टाइम वहां पे मेजर साहब पिक्चर की शूटिंग हुई थी.
1: अच्छा. मेजर साहब अमिताभ बच्चन.
0: हाँ जी.
1: और अजय देवगन जी.
0: तो उस थोड़े महीनों के लिए अकेडमी का में इतने फनी इंसिडेंट्स हुए थे.
1: अच्छा. तो कई महीने वो शूट चला था.
0: आई थिंक दो तीन महीने तो चला था मेरे ख्याल से.
1: अच्छा.
0: तो उसमें क्या हुआ कि एक डेढ़ महीना तो चला था फॉर श्योर
1: जी.
0: अकेडमी ने मना कर दिया कि हम अपने कैडेट शूटिंग के लिए नहीं देंगे.
1: ओके.
0: तो जो प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स थे वो बॉम्बे से यंगस्टर्स को लेके आए. उनको तो 150 चाहिए थे. उन्होंने हमारे जैसी यूनिफॉर्म पहनाई.
1: ठीक है.
0: और उनसे परेड वेरेड कराते थे और उनके शूटिंग वूटिंग के लिए यूज करते थे. लेकिन अब अकेडमी में ऐसा हो गया, जब भी आपको कोई सीनियर पकड़े इधर आओ, जूनियर यू कर, हम तो मुंबई से आया है शूटिंग वाला है. तो काफी क्योस मचा हुआ था उन दिनों.
1: अच्छा.
0: थोड़ी देर में सब सॉर्ट आउट हो गया. और फिर एक दो सीन थे, जैसे क्रॉस कंट्री का सीन है जिसमें एक पहाड़ी के ऊपर वो दिखाते हैं अजय देवगन फर्स्ट आया.
1: अच्छा.
0: तो उसमें उन्होंने हमारे कैडेट्स वगैरह को बुलाया था कि पीछे आप लोग भागना, लास्ट में ये आगे आके फर्स्ट आ जाएंगे.
1: ओके. हीरो मतलब हीरो बन जाएंगे. ठीक है.
0: हमारे कैडेट थोड़ा दिल पे लगे कि हमारे रहते कैसे फर्स्ट आ जाएगा. वो आई थिंक 10-15 बार शूट करना पड़ा, हर बार हम आगे आ जाते थे.
1: अच्छा.
0: कोई ना कोई. तो ऐसे इंसिडेंट्स बहुत, इट वॉज वेरी फनी. तो
1: अच्छा.
0: हम लोग आई मीन काफी क्लोजली, मैं भी एक दो किसी शूट में हूँ, भीड़ में कहीं पे दिख रहा हूँ इधर उधर.
1: अच्छा. हम सर मैं मूवी देखूंगा आपको देखने के लिए.
0: हाँ जी प्लीज. तो काफी इंटरेस्टिंग मूवी थी. और उसका गाने भी, एक्चुअली इस मूवी के गाने भी बहुत अच्छे थे सभी.
1: हाँ गाने सर बड़े सुंदर गाने थे, और सुंदर हीरोइन भी थी इसके अंदर, सोनाली बेंद्रे.
0: बिल्कुल.
1: तो सर वहां पर गाने भी शूट हुए होंगे उसी अकेडमी में?
0: गाने शूटिंग हमने कभी

0: रखे नहीं. आई थिंक हमारे कुछ सीन्स वगैरह मेस के, पीटी ग्राउंड, क्रॉस कंट्री, ये सब होते थे. लेकिन और सोनाली बेंद्रे तो पूरी एकेडमी की फेवरेट थी.
1: अच्छा,
0: मतलब आप आई डोंट नो लेट 90s में.
1: जी जी जी.
0: स्टिल टुडे शी इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस.
1: ऑफ कोर्स.
0: और वो एक्टिंग एज अ पर्सन शी सो नाइस. जिनसे मिली भी सब इतनी तारीफ करते थे कितने अच्छे से बात करती है. तो पूरी एकेडमी बस
1: सारी
0: दीवानी थी. कहीं जहां बहुत ही देखने भाग जाते थे.
1: तो मैंने तो सर आपसे बात करते करते ना वो एक सॉन्ग भी निकाल लिया है, तो उसके बारे में बताइए सर. कुछ कोई किस्सा किसी शूट के दौरान आपके सामने आया हो, आपकी टीम के सामने आया हो.
0: हमें बस एक बार एक मिलिट्री हॉस्पिटल का वहां पे सीन है.
1: अच्छा.
0: मूवी में तो जैसे ही होता था तो सारी एकेडमी में बात हो जाती सोनाली बेंद्रे मिलिट्री हॉस्पिटल में आई है.
1: अच्छा.
0: तो एक घंटे में कई मेरी टांग दर्द हो रही है, मेरी हाथ दर्द हो रही है. वहां पे पहुंच गए, बहुत सारे रिपोर्ट करने, सबको वापस भगा दिया था.
1: अच्छा.
0: तो सब चलता रहता था वहां
1: जी. तो अजय देवगन की कभी कोई शूट आपके आसपास आपके सामने कभी हुआ, क्योंकि एकेडमी में ही शूट चल रहा था.
0: हाँ जी, वो ड्रिल में पीटी में कई बार आते थे. बट आई मीन मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, बट जो लेवल ऑफ फिटनेस, जो लेवल एनडीए कैडेट्स का होता है,
1: बिल्कुल
0: फिल्मी हीरोज का नहीं होता. तो अक्सर मतलब थोड़ा सबड्यू करके थोड़ा खर्च के उनसे करवाया जाता था.
1: अच्छा अच्छा.
0: ताकि फिल्मी इफेक्ट पूरा दिख जाए.
1: बिल्कुल. हाँ, रीटेक्स के साथ. हाँ, वो सब ठीक से हो जाए.
0: मैं आपको ये बता रहा हूँ, हमें बहुत अच्छा महसूस होता था. मतलब एक तरह का कॉन्फिडेंस कि बॉलीवुड वो बनने की कोशिश कर रहा है जो हम हैं,
1: जो आप हैं.
0: जो एक कॉन्फिडेंस आता है कि ये मतलब वो एक्टर्स है, ऑब्वियसली वो फौजी नहीं है, वो अंडर ट्रेनिंग नहीं है. पर हमें बहुत कॉन्फिडेंस आता था देख के कि हमने जो अचीव किया है, जो हमारी पर्सनालिटीज हैं, जो हमारा फिटनेस है वो लोग एज एन एक्टर बनने की कोशिश करते हैं टू मेक अ गुड मूवी. सो वो कॉन्फिडेंस आपके साथ सारी लाइफ रहता है.
1: बिल्कुल बिल्कुल. तो मेजर साहब, मैंने यहां पर ये उस फिल्म का जो आपके साथ यादों में जुड़ी हुई है,
0: बिल्कुल
1: मेजर साहब, उसका ये खूबसूरत ट्रैक निकाल लिया है और आपकी पसंद का भी है. मेजर मानिक एमजोली हमारे साथ हैं, सेना मेडल से सम्मानित इंडियन आर्मी वेटरन. आप बने रहे हमारे साथ संदेश टू सोल्जर्स पे और मैसेज करते रहें.

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है संदेश टू सोल्जर्स। शाहिद आपके साथ और हमारे साथ हैं आज के हमारे खास मेहमान मेजर मानिक एम जोली। इंडियन आर्मी वेटरन हैं, सेना मेडल से सम्मानित हैं और गोरखा राइफल और मिलिट्री इंटेलिजेंस में रहे हैं। फील्ड कमांडर, कॉर्पोरेट इनोवेटर और मास कम्युनिकेशन स्ट्रेटजिस्ट हैं। फाउंडर हैं नेत्रम डिफेंस रिव्यू के और सेलिब्रेटेड ऑथर भी हैं, टीवी पैनलिस्ट हैं, लीडरशिप कोच हैं और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं बार बार अगर बताना भी चाहूं तो भी कुछ ना कुछ रह जाएगा। तो मेजर साहब, हम बात कर रहे थे सर आपके एनडीए के दौर की, वो बड़े इंटरेस्टिंग किस्से आपने जो सुनाया और हमने गाना भी वो सुना, सोनाली बिंद्रे पर और अजय देवगन पर जो पिक्चराइज किया गया, आपने उनको देखा कि वो शूट के दौरान क्या क्या वहां पर इंसिडेंट्स हुआ करते थे। तो मैं आगे बढ़ूं, मैं सोच रहा हूं कि पहले क्यों ना मैसेजेस ले लेता हूं क्योंकि हमारे लिसनर इंपॉर्टेंट है, वो इंतजार कर रहे होंगे हम उनके मैसेज पढ़ के सुनाएं। सर मनीष इदरीसी का मैसेज है रामपुर बिलासपुर से। नमस्कार सर जी, नमस्कार मेजर साहब।
1: नमस्कार, जय हिंद।
0: ये मैसेज है, जय हिंद टू सर, आई एम अजय अहिवार फ्रॉम मध्य प्रदेश। फिर से आया इनका मैसेज और क्लास 12 प्रिपेयर्ड कर रहे हैं ये। फिर से मैसेज आया और हमने आपको बता दिया है, सर ने बताया कि किस तरीके से आप कर सकते हैं और कैसे प्रिपेरेशन करनी है। अब ये मैसेज आया सर, संदेश टू सोल्जर्स, मेजर साहब जय हिंद, शो रोचक, ज्ञानवर्धक, लाभप्रद और सकारात्मक संदेश देने वाला है। मेजर साहब इस शो से लोग इंस्पायर्ड होंगे, देशभक्ति का जज्बा कायम रहेगा, ये कह रहे हैं।
1: धन्यवाद, जय हिंद।
0: और ये कहते हैं कि मेरा मानना है कि हर दिल में देश प्रेम की आग सुलगती रहनी चाहिए। और ये एक आगे कुछ पंक्तियां लिखते हैं सर, अर्ज है चलो फिर से वो नजारा याद कर लें, शहीदों के दिल में थी जो ज्वाला वो याद कर लें, जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पर, बलिदानियों के खून की वो धारा याद कर लें।
1: बहुत बढ़िया।
0: तो ये हैं सर एडवोकेट वारिस अली खान, संजय नगर, ऐशबाग, लखनऊ से, जिन्होंने ये मैसेज किया है। और इसके अलावा मैसेज है विलेज बरकतपुर, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर, स्टेट यूपी, नेम चरुण कुमार, आप सभी आर्मी ऑफिसर्स को मेरा जय हिंद सर।
1: आपको भी जय हिंद।
0: और ये है सर, नमस्कार जी, होली चौक उत्तम नगर से, जयराम खोरवाल, प्रोग्राम हमें अच्छा लग रहा है जी, खुशनसीब हैं वो जो वतन पर मिट जाते हैं, मरकर भी वो लोग अमर हो जाते हैं, करता हूं उन्हें सलाम ए वतन, सलाम ए वतन पे मिटने वालों, तुम्हारी हर सांस में तिरंगे का नसीब बसता है, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद।
1: भारत माता की जय, जय हिंद। बहुत अच्छा मैसेज साहब
0: जी। सर मैसेज और भी हैं, मैं सोचूं कि पढ़ के सुनाई दूं फिर आगे हम बातचीत करेंगे, बहुत सारे मैसेज हैं सर। ये बहुत लंबा एक मैसेज है, गुड आफ्टरनून टू यू बोथ सर।

0: this to soldiers. It's a nice program. Salute to Indian Army, Navy, Air Force soldiers, and also your parents and family members. Thank you for sharing your valuable feedback experience, especially regarding Kargil War. Regarding your achievement and medals, which are deserving, on the 15th of our country, India, celebrating 80th Independence Day on this occasion, I wish all Indians happy 80th Independence Day. Bharat Mata Ki Jai. Apna Bharat Mahan Hai. Vande Mataram Jai Hind from M.R. Madhusudan. Ye M.B. Rajeshwar, son of M.B. Rajeshwar. Datar Colony, near Shivalayam Temple. Sita Phalmandi, Sikandrabad, Telangana se sir ye message aaya hai.
1: Thank you.
0: काफी खूबसूरत और बड़ा लंबा मैसेज था ये और ये है जहिंद सर आपको और हमारे देश को समस्त जवान स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई आप हैं तो हम सुरक्षित हैं इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मैं शबनम वी के दत्त कॉलोनी नई दिल्ली से
1: धन्यवाद आपको भी जय हिंद और मैं बोलना चाहूंगा
0: जी जी जी
1: कि ये सारे अच्छे मैसेजेस सुन के चाहे मैं अभी रिटायर्ड हूं या सर्विंग हो
0: जी
1: किसी भी फौजी को बहुत अच्छा लगता है जिसको बोलते हैं ना कि आपको पता है भाई हमारे देश में इतना प्रेम और रिस्पेक्ट है फौजियों के लिए
0: बिल्कुल सर बिल्कुल
1: आप अपनी ड्यूटी करते हुए घबराते नहीं आपको पता है पीछे मेरा देश है
0: पीछे मेरा देश है देशवासी हैं सर और देशवासी सर आपको सलाम करते हैं सैल्यूट करते हैं और सर हम आपके ऋणी हैं क्योंकि जो हमारे सोल्जर्स हैं वो हमारे देश के भीतर भी देश की सीमाओं पर भी देशवासियों की सुरक्षा के लिए समर्पित हैं तो ये बहुत बड़ी बात है कि उनका जो डेडिकेशन है देश और देशवासियों के लिए तो वो सैल्यूट है सर हमारे सोल्जर्स को इसीलिए हमारा प्रोग्राम है संदेश टू सोल्जर्स सर मैसेजेस में लगातार अभी मैं सोचता हूँ रोक दूं अभी बहुत सारे मैसेजेस आए हैं मैं आपसे सर आगे बातचीत बढ़ाना चाहता हूं मैं चाहता हूं कि सर आपसे हम जानने के फिर आप जब गोरखा रेजिमेंट में आप हुए कमीशन 1999 में तो वो फिर जो सफर शुरू हुआ अब आप बताएं कि फिर जिस तरह से आपके फिर आगे आप जाते हैं
1: मैं तो फिर कमीशन कुपवाड़ा में कश्मीर में फॉरवर्ड एरिया है वहां पे हमारा रोल या तो लाइन ऑफ कंट्रोल पे कारगिल के एकदम बाद था
0: अच्छा
1: तो सीज फायर तो नहीं था तो दिन रात गोलाबारी होती रहती थी
0: अच्छा
1: तो हम भी उन पर करते हैं वो भी हम पर करते रहते हैं उस टाइम ये क्रॉस बॉर्डर रेड बहुत होती है उन्होंने काफी सोल्जर्स हमारे उसमें भी शहीद हुए लेकिन जो था मतलब वो एक सोल्जर के लिए एज अ सोल्जर
0: जी
1: एक एक्सपीरियंस था कि आप किसके लिए सोल्जर बने अगर आपने लड़ाई नहीं देखी अगर आपने गोलाबारी नहीं देखी अगर आपने वो तो इस हिसाब से फिर हम काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन में चले गए
0: जी
1: जहां पे हमने मेरी यूनिट ने बहुत अच्छा करा क्योंकि वो बहुत एक्टिव एरिया था
0: अच्छा मतलब सेंसिटिव एरिया था और हमेशा कुछ ना कुछ हैपनिंग
1: तो कुपवाड़ा बॉर्डर जो है वहां से बहुत सारे लॉन्च पैड है जहां से पाकिस्तान टेररिस्ट अंदर भेजता रहता है
0: ओके
1: तो इस कारण वो बहुत एक्टिव एरिया माना जाता है
0: और वहां पर आपकी पोस्टिंग थी
1: हाँ जी तो आम आदमी एक्चुअली अक्सर जब भी आप बात करते हो जंगल में टेररिस्ट ढूंढ रहे थे पहाड़ में ढूंढ रहे थे
0: जी
1: उसका स्केल समझ नहीं पाता
0: जाहिर
1: स्केल पे हम बात कर रहे हैं कि वो जंगल कितना बड़ा था
0: अगर मैं इमेजिन भी करूं तब भी मैं उस लेवल तक नहीं पहुंच सकता
1: यूं लगा लीजिए एक पूरा शहर जंगल है
0: अच्छा
1: जिस शहर में आप लोग आपके लिस्नर रह रहे हैं
0: जी
1: वो पूरा शहर जंगल है और आप 100 लोग हैं
0: अच्छा
1: आप कितना ढूंढेंगे और उसमें पहाड़ियां भी हैं क्लिफ भी हैं बर्फ भी पड़ी हुई है 20-20 फुट
0: 20-20 फुट
1: तो एवरेज आफ्टर स्नोफॉल होती है
0: अच्छा
1: और आप 9000 फीट से आपका बेस शुरू होता है 15-17000 फीट तक जा रहा है आपको सारा पेट्रोल करना है तो अक्सर आपने देखा होगा फौजी से आप सब लोग पूछते हैं कैसा था ये हाँ ठीक था अच्छा था
0: तो यानी कि वो ओनली रीजन कह रहे हैं वो
1: ओनली रीजन इज समझा पाना पॉसिबल नहीं है कि वो किस तरह का एक्सट्रीम एनवायरमेंट है
0: सर मैं ये आपसे जरूर जानना चाहूंगा वो आप बताइए प्लीज
1: तो सी जो माउंटेन्स हैं वहां पे क्लिफ्स हैं
0: जी
1: और बर्फ पड़ी हुई है एक पीछे की तरफ पूरा जंगल है चलने की जगह नहीं है स्नो स्टॉर्म आ जाता है ब्लिजर्ड आ जाएगा
0: अच्छा
1: उसके बाद ऊपर से टेररिस्ट है
0: जाहिर है जो वेट सबसे बड़ा
1: जो हाँ जो वेट कर रहा है कि आप वो उसको पहले दिख जाए
0: जी
1: खाना आपको हफ्ते में एक बार हेलीकॉप्टर से आता है
0: एक बार
1: हाँ जो भी फ्रेश राशन वो आपको हफ्ते में एक बार मिल जाएगा राइट आपको अगर गर्म रहना है ये 20-25 साल पुरानी बात है तो उसमें केरोसिन का स्टोव यूज करना पड़ रहा है मॉडर्न इक्विपमेंट उस टाइम नहीं थे
0: जी
1: डेली आप क्योंकि अनदर थिंग इज ये कारगिल के एकदम बाद की बात है
0: हाँ.
1: तो इंडियन आर्मी ने भारत सरकार ने डिसाइड करा कि कारगिल इसलिए हुआ था कि कुछ पहाड़ी हमने विंटर वैकेट करी थी तो पाकिस्तानी आकर बैठ गए
0: ओके
1: तो अब हम कुछ भी विंटर वैकेट नहीं करेंगे
0: हम वहां पर भी अपनी ड्यूटी रखेंगे
1: तो नेचुरली प्रेशर इज ऑन आर्मी अब वो पहाड़ियां जहां पर हम आज तक गए भी नहीं थे
0: ओके
1: उनके ऊपर छोटे छोटे टुप्पे हिल रॉक वहां पे जाके नई पोस्ट एस्टेब्लिश करना रिसोर्सेज नहीं क्योंकि आप अगर फौजी को ये भी बोल देंगे ना चप्पल में जाओ

मेजर मानिक एम जॉली आज के संदेश हमारे खास मेहमान, सेना मेडल सम्मानित इंडियन आर्मी वेटरन, और मेजर मानिक की पसंद का ये ट्रैक आप भी एंजॉय करें हमारे साथ, बने रहें संदेश सोल्जर्स में, शायद आपके साथ।

102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में आप सुन रहे हैं शाहिद की आवाज और मेरे साथ हैं आज के हमारे खास मेहमान मेजर मानिक एम जॉली।

0: सेना मेडल से सम्मानित इंडियन आर्मी वेटरन, और ये गाना मेजर साहब की पसंद से हमने सुना सुस्तम सौराब से। सर यहां पर बातचीत का सिलसिला जो शुरू हुआ था वो तो उतना शायद जोशीला नहीं था, लेकिन जिस जोश से हम आगे बढ़े हैं तो प्रोग्राम खत्म होने का समय आ गया और अभी मेरे पास बहुत सारी बातें आपसे करने के लिए बची हुई हैं। तो मैं मैसेजेस जो ऑलरेडी काफी सारे इकट्ठे हो गए मैं उनको बाद में पढ़ूंगा, लेकिन मैं अभी आपसे ये जानना चाहूंगा मिलिट्री इंटेलिजेंस में भी आपने एक काफी बड़ा समय दिया, एक बड़ा रोल प्ले करा, तो वो क्या था एक्सपीरियंस आपका, उसके बारे में बताइए।
1: तो शायद मिलिट्री इंटेलिजेंस में आप वॉलंटियर करते हैं कि मैं इसमें सर्विस करना चाहता हूं, आपको 2 साल का प्रोबेशन रखते हैं वो।
0: अच्छा,
1: तो अराउंड 10-11 साल में MI में था, तो वहां पे मैं काउंटर इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट था।
0: अच्छा।
1: और स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, काउंटर इंटेलिजेंस की हमारी खबर बाहर नहीं जानी चाहिए।
0: ओके।
1: इंटेलिजेंस जैसे होती है उनकी खबर लें, तो अलग अलग डोमेन में, और नॉर्थ मेरा डोमेन था तो उसमें वही नौकरी करी मैंने ज्यादा, काफी ऑपरेशन किए हमने, काफी देश में जो जासूस घूम रहे हैं काफी पकड़े हैं।
0: अच्छा।
1: तो इस तरह से मेन टास्क हमारा फिर ये होता है कि
0: कोई अगर इंट्रूडर है,
1: हाँ जी,
0: तो उसका पता लगाना और उसको पकड़ना।
1: या, और हमारे जो बेसिकली कम्युनिकेशंस, इंटेलिजेंस का बेस इज कम्युनिकेशन, वहां से खबर आती रहे और यहां से खबर ना जाए। बाकी सारी दुनिया इसके अराउंड बनी हुई है, ये ये दो पिलर हैं। सो अपना अपना रोल सब प्ले करते हैं। तो उसमें मैंने मैंने स्पेशलाइजेशन थी मेरी कम्युनिकेशंस की, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन की, जो अभी मैं पढ़ाता हूं और फौज छोड़ने के बाद तब से वही करते हैं।
0: जी, तो सर इसमें जो जो साइबर सेल का भी जो रोल रहता है वो भी आपने सेटअप किया, उसमें भी आप शामिल रहे।
1: तो अर्ली 2001-2 में जब नया नया इंटरनेट आना शुरू हुआ था तो सबको समझ आया था कि इंटरनेट से कम्युनिकेशन अब होगा।
0: ओके। उसे वो जमाने की बात है,
1: चिट्ठी फोन पे चल रहा था सारा।
0: जी जी जी।
1: तो उस टाइम देश का आर्मी का रादर पहला साइबर सेल पुणे में मैंने सेटअप किया था। मैंने एक दो कोर्स करे थे, स्पेशली कोर्स करवाए साइबर इन्वेस्टिगेशन के, एथिकल हैकिंग के, तो हमने समझा कि ये कैसे। तो उससे काफी आर्मी है, आर्मी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो भी चीजें टेक्नोलॉजी नहीं आती है पहले पकड़ने की कोशिश करती है।
0: Okay.
1: ताकि हमें एक स्टेप आगे रहे।
0: hmm.
1: तो फिर हमने साइबर सेल, साइबर पॉलिसी, इस पे काफी काम किया।
0: अच्छा।
1: तो वो आज तक चल रहा है और काफी अब तो बहुत डेवलप्ड है, पूरी डोमेन है।
0: बिल्कुल।
1: तो उस टाइम तो नया नया था
0: तो जाहिर है टफ भी रहा होगा उस टाइम पर, उसको सब मतलब स्ट्रीमलाइन करना,
1: समझने में टाइम लगता था,
0: समझने में टाइम
1: कैसे होता है।
0: जी, तो सर अभी ये सब चीजें तो हो गई आपकी,
1: ये वो वाला जमाना था शायद जब आप किसी से ईमेल मांगते थे वो ईमेल के साथ पासवर्ड देता था।
0: अच्छा।
1: मैं सच बता रहा हूँ, तो लोगों ने कहा पासवर्ड क्यों दे रखा था, फिर वो चेक कैसे करेगा।
0: अच्छा।
1: मतलब धीरे धीरे समझ आया
0: कि भाई ये जो साइबर है ये किस तरह से काम करता है और इसमें कैसे सिक्योर रह सकते हैं। सर इन सब चीजों के साथ साथ आप जो हैं ऑथर भी हैं, आपने किताब लिखी है कुपवाड़ा कोड्स, और इसके बारे में जरूर बताइए। इतना सब आपने किया, आप एक डायरिंग आर्मी ऑफिसर, इंटेलिजेंस पर आपने काम किया, काउंटर टेररिज्म पर आपने काम किया, आपको सेना मेडल से और दूसरे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, आपको पीएम मोदी के मिशन इनोवेशन के नेशनल चैंपियन के तौर पर भी आपको सम्मानित किया गया, अब आप ऑथर भी बन गए।
1: जी, तो ये अभी मैंने 1 साल पहले लिखी थी, तो अपने सारे एक्सपीरियंसेस, कुछ ऑपरेशंस को इकट्ठा करके मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी है, गोरखा गैरिसन।
0: अच्छा।
1: जिसमें गोरखा यूनिट और कुछ इंटेलिजेंस वाले जम्मू कश्मीर में ISI और टेररिस्ट को ढूंढ रहे हैं।
0: अच्छा, तो ये एक स्टोरी है,
1: ये एक पूरी ये सीरीज
0: है,
1: ये फर्स्ट बुक थी उसकी कुपवाड़ा कोड्स।
0: ओके।
1: जो कि पिछले साल आई थी और हार्पर कॉलिंस के साथ है।
0: क्या बात है।
1: तो
0: सर क्या आप चाहेंगे कि इसको मतलब हम OTT प्लेटफॉर्म या कहीं पर देखें, इसको अगर पिक्चराइज किया जाए इसको, फिक्शन।
1: इट इज अ वेरी गुड स्टोरी, आई होप किसी दिन इस पे कुछ बने।
0: जरूर सर, जरूर, हमारी शुभकामनाएं है और हम जरूर चाहेंगे कि इस पर अच्छी आपके एक्सपीरियंसेस के साथ, जो इसमें एक्सपर्टीज के साथ जो आपने लिखी है ये, उसको जरूर पर्दे पर, छोटे पर्दे पर ही सही लेकिन उतारा जाए और हम उसको देख पाएं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना इतना कीमती समय दिया, इतनी अच्छी आपने बातें करी, इतने अच्छे एक्सपीरियंस आपने हमारे साथ शेयर करे, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय निकाला। और 80वां देश जो है स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, तो उसकी भी बहुत बहुत तमाम देशवासियों को, हमारे सुनने वालों को, और मेजर मानिक आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद
0: सर। जाते जाते जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जाते जाते मैं सर आपसे अब ये रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि कम से कम एक आपकी पसंद का गाना जरूर चलाऊं जो आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है और आपके दिल से करीब है।
1: तो मैं आपको बताता हूँ, जब NDA में थे है तो एक पिक्चर रिलीज हुई थी बॉर्डर
0: जी, बड़ी फेमस,
1: तो उसका गाना था संदेश से आते हैं
0: जी।
1: संडे को दोपहर को हर कमरे में गाना चल रहा था।
0: अच्छा।
1: और इस गाने आई डोंट थिंक फौजी लाइफ, फौजी इमोशंस को इस गाने से अच्छा कोई कैप्चर करता है।
0: क्या बात है सर।
1: तो मैं फर्स्टली आपको थैंक यू, आपके सभी लिसनर्स को जय हिंद।

0: सर लिसनर्स तो हमारे अभी भी जुड़े हुए हैं और मैसेजेस आ रहे हैं।
1: हाँ जी, और स्वतंत्रता दिवस की सबको शुभकामनाएं और थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू सो मच सर आपके आने के लिए। यहां पर मेजर मानिक एंड जॉली की पसंद का ये गाना हम छोड़ करके जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ हम सर को जाते जाते जो मैसेज कुछ एक तो मैं कम से कम पढ़कर सुनाई दूं। सर हेड्स ऑफ ऑल योर एक्सपीरियंसेस शेयरिंग विश वन लाइफ वी गेट अ चांस टू लिव 1% ऑफ योर लाइफ प्लीज शेयर योर बुक फ्रॉम यूएसए न्यू जर्सी। ये मैसेज आया है किसी का और इनका नाम मुझे नहीं पता लग पा रहा है, लेकिन इन्होंने सर बड़ा दिल से मैसेज किया है आपको।
1: थैंक यू सो मच, रियली अप्रिशिएट योर मैसेज। जय हिंद आपको भी।
0: और सर ये मैसेज है, सर कैन वी ज्वाइन सीक्रेट सर्विस थ्रू एनडीए और आफ्टर एनडीए, ये पूछ रहे हैं सर। समय हालांकि खत्म हो गया लेकिन मैं क्या करूं।
1: हाँ जी, हाँ जी, जरूर जरूर, आप फौज में जाइए और कुछ भी ज्वाइन करें।
0: और सर ये मैसेज है, हेलो सर, एनडीआर एंड आरजे एंड मेजर सर, जय हिंद जय भारत सर। जैसे आप जैसे महानुभाव की बातें सुनकर यूथ बहुत इंस्पायर होते हैं, उनमें देशभक्ति का जज्बा पैदा होता है। आप सदा स्वस्थ रहें। मिसेस धर्म भाटिया रोहतक से सर ये मैसेज आया सर आपके शहर से।
1: वाह, हमारे शहर से आया
0: जी।
1: भाटिया जी थैंक यू वेरी मच, जय हिंद आपको भी।
0: और सर मेजर साहब को विजय कुमार त्रिचुरपल्ली की ओर से जय हिंद और स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं सर। विजय कुमार है ये।
1: आपको भी विजय जी जय हिंद आपको भी।
0: सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े ये हमारे लिए खुशनसीबी की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेजर एम जॉली हमारे साथ थे आज, वेटरन इंडियन आर्मी सेना मेडल से सम्मानित। और आप सुन रहे थे संदेश सोदश शाहिद के साथ।

0: 14 अगस्त 1947 भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर परिवार जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में एक मिनट का मौन धारण करें।
1: நேர்களின் இனிவருக்கு இன்றிரவு 7:25 வேளாண் தொழில்களுக்கான உழவர் உலகம் நிகழ்ச்சியில் நாட்டாங்காலில் கொடுவா மீன் வளர்ப்பு, நாகப்பட்டினம் டாக்டர் எம்ஜிஆர் மீன்வள கல்லூரி

0: सुनते हैं फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट श्री नवीन जिंदल का विशेष संदेश।
1: वंदे मातरम। प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अमर शहीदों को नमन करते हैं और राष्ट्र निर्माण में जुटे हर भारतीय का अभिनंदन करते हैं। विक्रम 1 की लॉन्चिंग, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य, राष्ट्रमंडल खेलों में 39 पदक और डिजिटल क्रांति, यही है नए भारत की पहचान। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के हर घर तिरंगा हर दिन तिरंगा अभियान से जुड़े। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
2: நேர்களே, அப்படியே 9:30 போல நம்ம திருச்சிராப்பள்ளி வானொலி முதல் அலைவரிசை 936 கிலோஹெர்ட்ஸில் நாடகமலர் மகனே மகனே சேலம் சங்கீத ரத்னம் அவர்களில் எழுதியது. அமைப்பு சிவமுருகையன், எஸ் ஜான்சன் ஆகியோர்.
3: இடைவிடா இசை மழையால் நம் இதயங்களை நினைத்துச் செல்லும் இது இனிய ராகம்.

14 अगस्त 1947 भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर परिवार जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद कर

0: और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में एक मिनट का मौन धारण करें।
1: தென்றலில் மிதந்து வரும் தெவிட்டாத கானம் இது, இனிய ராகம்.

0: நேயர்களினி மத்திய அரசின் சட்டம் மற்றும் நீதித்துறை அமைச்சகம் வழங்கும் விளம்பரதார நிகழ்ச்சி கேட்கலாம்.
1: We bring you a talk on mental health and access to justice, care and human dignity. This talk was part of a webinar organized by the Department of Justice.
2: जब तक एक इंडिविजुअल ये नहीं समझता कि मुझे मेंटल हेल्थ की इश्यूज हैं, मुझे हॉस्पिटल जाना है या मुझे किसी से कनेक्ट करना है, तब तक नेक्स्ट स्टेप आता ही नहीं है. We do not then talk about what rights he has or what where he can go. जब भी हम अक्सर स्वास्थ्य की बात करते हैं, फिजिकल हेल्थ, whether he is healthy or not, शारीरिक रूप से हम स्वस्थ हैं कि नहीं, एंड we usually ignore that the mental health aspect and the social. So WHO has identified that mental health is integral to health. So when we are talking about mental health, what is mental health? It's a complex process. क्या हम समझ पा रहे हैं मेरे साथ जिंदगी में क्या हो रहा है, लाइफ में कितने सारे पड़ाव पड़ते हैं, आर वी एबल टू कोप अप विद दोज थिंग्स, आर वी प्रोडक्टिव डिस्पाइट हैविंग टू फेस वेरियस चैलेंजेस इन लाइफ. सो इफ वी आर एबल टू डू सो, वी वुड से दैट आई एम मेंटली हेल्दी, आई एम एबल टू डील विद माई मेंटल हेल्थ एडिक्वेटली. देयर आर वेरियस सिचुएशंस इन लाइफ, वेदर इट इज एट वर्क प्लेस, फैमिली, with how we are connecting with other individuals, whether we are facing some legal battle or we are having shortage of funds, someone in the family is ill, or home environment or the school environment or the workplace is having

प्रॉब्लम्स। सो इन सब चीजों को लेके हम सम इंडिविजुअल्स में फील स्ट्रेसफुल, सम इंडिविजुअल्स में फील दैट दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। तो हमारे रिएक्शंस अलग अलग होते हैं एंड एट द सेम टाइम वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट सम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस इज इम्पॉर्टेंट टू ड्राइव अस टू फेस दोज चैलेंजेस। अगर हमारे पास एक बच्चे के सामने एग्जाम हो ही नहीं तो वो पढ़ेगा ही क्यों? तो एग्जाम एक तरह से उसके लिए स्ट्रेस भी क्रिएट करता है, पर दूसरे पर्सपेक्टिव से उसको एक चैलेंज भी मिलता है कि मुझे आगे सीखना है। बट एट द सेम टाइम आफ्टर सर्टन अमाउंट ऑफ स्ट्रेस वी बिकम डिसफंक्शनल, जिसको हम कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, वो हमारे लिए एंग्जाइटी देता है, घबराहट देता है, एक हेल्पलेसनेस की फीलिंग देता है। दैट इज द टाइम व्हेन वी नीड टू सीक हेल्प। इफ वी आर एबल टू फेस द स्ट्रेस एडिक्वेटली वी आर फाइन, बट इफ वी आर नॉट एबल टू फेस द कोपिंग, वी आर नॉट एबल टू फेस दोज चैलेंजेस, देन वी स्टार्ट हैविंग हेडेक हो रहा है, मुझे बहुत थकान लगती है, मेरे को नींद नहीं आ रही है। सो दीज आर सम ऑफ द साइंस एंड कॉमनली रिपोर्टेड सिम्टम्स, वेदर दे आर इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल इश्यूज, क्योंकि अक्सर हम मेंटल हेल्थ इश्यूज को भी फिजिकल का नाम देते हैं। हमें महसूस यही होता है कि हमारे शरीर में थकान है, बट एक्चुअली द कॉज मे बी एट द मेंटल लेवल। ये कहना कि कब उदासीपन डिप्रेशन मतलब एक क्लिनिकल डिसऑर्डर बन जाता है, एक बीमारी का रूप धारण कर लेता है, बहुत कोई डिमार्केशन नहीं है। जनरली वी से दैट इफ इट इज परसिस्टेंट, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल ऑफ सैडनेस डिप्रेशन विच इज वेरी कॉमन मेंटल डिसऑर्डर, एंड इट इज सैडनेस या डिप्रेशन इज कॉमनली यूज वर्ड अमंग द पब्लिक। सो हाउ डू वी रिकोगनाइज दीज साइंस? जैसा कि मैंने कहा, सबसे पहले हम शारीरिक कंप्लेंट्स देते हैं, मेरे हेडेक हो रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा नहाने का, मेरा कोई नींद ठीक से नहीं आती, या मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगती है, या मेरा मन नहीं करता है खाना खाने को। सो दीज आर सम ऑफ द फिजिकल सोमेटिक कंप्लेंट्स दैट इफ वन इज फीलिंग दैट और वन इज रिपोर्टिंग, वी नीड टू टेक इट सीरियसली। सम ऑफ द बिहेवियरल साइंस इंक्लूड, देयर इज अ सडन, पेरेंट्स आके कहते हैं कि कई बार पता नहीं बिना प्रोवोकेशन के, बिना कोई किसी कॉन्टेक्स्ट के इरिटेबल हो जाता है, वापस जवाब देता है, या अननेसेसरीली शॉपिंग आजकल हो रही है, एक्सट्रीम्स ऑफ बिहेवियर विच वॉज नॉट देयर अर्लियर। सो एनी चेंज ओवर द टाइम विच इज नॉट देयर, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय द फैमिली, दैट मीन्स देयर इज सम दिस बिहेवियर नीड्स टू बी attended to. At the social level, we don't want to interact with people, we don't want to respond to people, respond to family members. छोटी छोटी चीज़ों को लेके हम nervous हो जाते हैं, sometimes we say that मुझे लग रहा है कि बस जिंदगी का अंत आ गया है. So these kind of emotional responses also are a matter of concern and may be an indication for mental illness. So, मोटे तौर से अगर हम देखें तो कुछ ऐसे साइंस होते हैं जो इररिस्पेक्टिव, दे कैन बी, दीज साइंस कैन बी ड्यू टू सम फिजिकल इलनेस एंड दीज कैन ऑल्सो बी साइंस फॉर सम मेंटल इलनेस। हमारे रोज के रोजमर्रा का जो रूटीन है उसमें चेंजेस आ रहे हैं, बच्चा स्कूल नहीं जाना चाह रहा है, कॉलेज जाने में छुट्टी अक्सर आ रही है, हम वर्क प्लेस से कोई ना कोई बहाना लेके जल्दी वापस आ जाते हैं, वी आर नॉट ईटिंग वेल, I get up in between at night, or there is a change in my interactive. पहले बहुत ज़्यादा socialization होती थी, अभी मैं मेरा मन नहीं करता है. So these are gross signs which may be due to any reason, but they are important to be picked. Some signs are specific to a particular disorder. ये सब कॉमन बीमारी है, बहुत ज़्यादा चेकिंग होती है, बहुत ज़्यादा लगता है कि बहुत गंदा हूँ तो बार बार नहाते हैं, या बहुत ज़्यादा हाथ हैंड वॉशिंग होती है, तो OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। बच्चों में अक्सर स्कूल से रेफरल आते हैं कि बच्चे में बहुत ज़्यादा, वो सेवन्थ क्लास में पढ़ रहा है पर उसको अभी तक सेंटेंस बनाना नहीं आता, उसकी स्पेलिंग में एरर्स बहुत हैं, या मैथ्स में वो सेकेंड क्लास का परफॉर्मेंस है। स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर तारे ज़मीन पर हम सब ने देखी है, एंड दैट इज वन वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग वॉट दिस इज अबाउट। मैनी टाइम्स अनलाइक अदर इलनेसेस, पीपल डू रिपोर्ट मेरे को बहुत डिप्रेशन रहता है, इट शुड बी टेकन सीरियसली, इट्स अ क्राई फॉर हेल्प दैट आई एम नॉट फीलिंग वेल। अक्सर

0: क्या कह रहा है कि इंडिविजुअल्स हु डू ट्राई टू कमिट सुसाइड दे डू से दे वर्बलाइज देयर प्रॉब्लम्स देयर हेल्पलेसनेस एंड दे सीक हेल्प विच वी मोस्ट ऑफन इन आवर पीयर ग्रुप्स वी डू नॉट रिकॉग्नाइज लेटर ऑन अरे उसने तो ऐसा कहा था. समटाइम्स इंडिविजुअल रिपोर्ट मुझे कुछ सुनाई देता है हम हंस के उड़ा देते हैं बात को. दिस मे बी साइंस फॉर साइकोसिस. Sometimes we say that बहुत anxiety, बहुत घबराहट हो रही है तो मुझे लगता है कुछ मिनट को लगा कि मेरा तो अंत आ गया. It may be a panic attack. So we need to seek help rather than face that मेरा लोग मजाक उड़ाएंगे तो मैं नहीं जाता हूँ दिखाने. At times if it is possible तो teachers setting में या parents जो educated हैं we have small self-administered questionnaire which can actually tell you कि ये इस 10 आइटम्स में से इतना कट ऑफ दो के ऊपर है. दैट मीन्स यू नीड टू कंसल्ट अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल. PHQ GAT 7 आइटम 9 आइटम्स इट्स हार्डली एनीथिंग. वेरी सिंपल आइटम्स व्हिच कैन बी यूज्ड इन कम्युनिटी.
1: यू हैड बीन लिसनिंग टू अ टॉक ऑन मेंटल हेल्थ एंड एक्सेस टू जस्टिस केयर एंड ह्यूमन डिग्निटी. वी स्लिप इनटू अ शॉर्ट ब्रेक.

विनिर्भत्सिता कच्छते मन्दस्मित प्रभापूर मज्जद् कामेश मानसा अनाकलित सादृश्य चुबुक श्री विराजिता कामेश बद्ध मांगल्य सूत्र शोभित कंधरा कनकांगद केयूर कमनीय भुजान्विता रत्न ग्रैवेय चिंता कलोल मुक्ता फलान्विता कामेश्वर प्रेम रत्न मणि

नरी लज्जारंभादि वंदिता भवनामसुधा वृष्टिः पापारण्यद वानला दौर्भाग्यतूलवातूला जराध्वान्तर विप्रभा भाग्याभिचन्द्रिका भक्तचित्त केकी घनाधरा रोगपर्वत दम्भोणि मृत्युदारु कुठारिका महेश्वरी महाकाली महाग्रासा महाशना अपर्णा चण्डिका चण्डमुण्डा सुरनिषूदिनी क्षराक्षरात्मिका सर्वलोकेशी विश्वधारिणी त्रिवर्गदात्री सुभगा त्र्यम्बका त्रिगुणात्मिका स्वर्गापवर्गदा शुद्धा जपा पुष्प निभातृतिः ओजोवती द्युतिधरा यज्ञरूपा प्रियव्रता दुराधाध्या दुरादर्श्या पाटरी कुसुम प्रिया महती मेरुनिलया मंदार कुसुम प्रिया वीराराध्या विराट रूपा विरजा विश्वतोमुखी प्रत्यग रूपा पराकाशा प्राणदा प्राणरूपिणी मार्तांड भैरवा राध्या मंत्रिणी न्यस्य राजधूगो त्रिपुरेशी जयत्सेना नित्री पुण्या परापरा सत्यज्ञानानन्दरूपा सामरस्य परायणा कपर्दिनी कलामाला कामधुक् कामरूपिणी कलानिधि काव्यकला रसज्ञा रसशेवधिः पुष्टा पुरातना पूज्या पुष्करा पुष्करेक्षणा परं ज्योतिः परं धाम परमाणुः परात्परा पाशगस्ता पाशगन्त्री परमन्त्र विभेदिनी मूर्ता मूर्ता नित्यतृप्ता मुनिमानस हंसिका सत्यव्रता सत्यरूपा सर्वान्तर्यामिनी सती ब्रह्माणी ब्रह्मजननी बहुरूपा बुधाचिता प्रसवित्री प्रचण्डाज्ञा प्रतिष्ठा प्रकटा कृति